ही हैव टू ईट माई फूड। महाराज ने कहा कि हम नहीं लेंगे डाकू के हाथ का भोजन, चोर के हाथ का भोजन, खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। वो घोड़े पे चढ़ के चला गया डाकू, लेकिन मन ही मन में विचार करता है चाहे कुछ भी हो, बाबा जी को आज मेरा ही भोजन खिलाया जाएगा। महाराज ही वॉज सिटिंग इन मेडिटेशन एंड दैट डाकू बंडिट वेंट टू वन रेस्टोरेंट टू सम फार्मर हैव अ लिटिल रेस्टोरेंट ऑल्सो। When they saw the bandit is coming, oh God, can you imagine? They thought, today was a Friday and the cat was crossing the way. He came down, they said, yes sir, good morning sir. He said, okay. There is sitting one sadhu 2 kilometers far away under the tree. Take nice food and give him to eat. They said, yes sir, we will do, but here is the money. They said, no, boy, we don't need money, we will do it. We are happy to do for you. He said, no, today I give you money. Next time I will not give, but now today I give you money. कोई छोटा होटल था वहां डाकू को देख करके वो तो बेचारे घबरा गए, अरे वो राक्षस कटवाई गयो। घोड़े से उतर के आके बोला कि 2 किलोमीटर दूर महात्मा बैठा है खेजड़ी के नीचे, भोजन कराना है और ये पैसे ले। तो बोला पैसे नहीं चाहिए, हम सेवा कर लेंगे। क्या नहीं, आज तो मैं पैसा दूंगा ही, दूसरी बार आएंगे नहीं लेंगे। जाओ बढ़िया से बढ़िया भोजन बना करके खिला करके आ जाना बस। वेल दे वेंट, दे टुक द फूड एंड दे वेंट टू बाबा जी। बाबा जी सो सम पर्सन इज कमिंग विद द फूड। आओ भक्त, कम वेलकम भक्ता, व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट आर यू डूइंग? ही सेड, आई हैव ए लिटिल रेस्टोरेंट। All right. Prabhu, would you accept my food? I said, yes. Tum kaun ho? Ki main chota mazdoor hoon, restaurant hai. Achha. Prabhu, hum aapke liye kuch prasad bhojan laaye, khaiye, khilao beta, kha liya. While eating, his buddhi changed. Now, if you drink slowly, slowly glass milk, you become nice, happy and relaxed. But you drink slowly, slowly vodka or whiskey, after half glass, you feel here zzzz, the bees inside. Huh? Now the Maharaj is thinking, Babaji, आज तो कहीं गांव में जाना चाहिए, जंगल में बैठे बैठे परेशान हो गए। अरे जंगल में बैठे बैठे परेशान हो गए, अब तो कहीं गांव में जाना चाहिए, भक्तों को दर्शन कर देना चाहिए। बोरिंग सिटिंग अंडर द ट्री सो मेनी इयर्स, नाउ आई शुड गो टू सम विलेज एंड गिव सत्संग। केम, there was a beautiful small Shiva temple near the village, very near, close. He asked the Pandit Pujari if there is a room. They said, yes, there is one room for sadhus to stay. He stayed there. Evening prayer, and he came to prayer. There was a beautiful Shiva statue, not only Shiva Lingam, made out of gold. Now the food of the bandit is working in his blood. They were making prayer and he was hypnotized by statue gold.

पाव। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब कहा जो सोवत है। प्रकाश होने लगा, उषा काल, ब्रह्म मुहूर्ता, बाबा जी जा रहे हैं, आधा किलोमीटर दूर दिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो लोग भी दौड़ रहे हैं, बाबा जी भी मजबूत थे। बाबा जी ने देखा पीछे की फौज आ रही है, अब क्या करे। लेकिन दौड़ने से करने से बाबा जी का वो डाकू का चोर का खाना खाया था ना अन्न, वो पच गया, पसीने से पच करके निकल गया और वापस सद्बुद्धि आ गई। अब बाबा जी सोचे कि कहूंगा कि मैं चोरी करने को आया, तब तो रिपेयरिंग हो जाएगी। हा तपस्या टीज पूरी। देखा भाग्य सेवा एक तालाब था, पानी की झील, सुंदर निर्मल जल। दौड़ करके गए पानी की झील के अंदर, डुबकी लगाई और मूर्ति को स्नान कराने लगे। वो आए गए डाकू चोर कि बोला चुप रहो, जल्दी आओ, तुम भी लाभ ले लो, स्नान कराओ। रात को शंकर भगवान मेरे पास आए कि कई बरस हो गए मुझे स्नान नहीं कराया, मेरे को तो पानी की झील में नहाना है। हे भगत, तू ही मुझे समझता है, दूसरे गृहस्थी नहीं समझते, आ तू जल्दी कर, स्नान कराओ। दिन उदय होने से पहले पहले जाकर के भगवान को वापस सिंहासन में बिठाना, चलो बेटा जल्दी आओ। सब कहते हे महाराज बहुत अच्छे हैं, गुरुदेव की जय हो। मूर्ति को स्नान करा करके लेके आके रखा और आरती बोली, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश। बच गया, बुद्धि वापस आ गई। तो व्हाट हैपन, ही टुक द एंड रन अवे द यंग पीपल फ्रॉम द विलेज, दे वर रनिंग बिहाइंड। Dawn came and the Babaji looked behind, they are running some bodybuilders. Now what to do? If I will tell, Babaji is thinking, that I have stolen the statue, then today they will repair my mind. What to do? What to do? Lord help me. But while running, while hard work, sweating, and so many hours already, nearly 18 hours after eating, that the food of the thief was digested and sweated out. Again, normal intellect appeared. What to do? Luckily, there is always luck in bad luck. There was a beautiful lake. So he ran into the lake and began to bath the Lord Shiva. And people came, thief, thief. He said, stop, silent, don't talk. Lord Shiva came in the night to me and said, so many years I did not bath. The village people present me in the temple. Please, Swamiji, can you help me to bath? So I promised him, before sunrise, we will bring you back to your holy place. So come quickly, wash him. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Harar Gange Mahadev, Harar Gange, Gange Gange Harar, Bhole Shambhu, come on. Whoever was giving water, washing the Shiva, running back and brought Bhagavan Shiva statue, fixed there and begins to do aarti.

Guruji said, there is a never end. Never end from this divine nectar, divine light. And it's so strong. So I said, Guruji, can I give you one suggestion? Guruji said, yes. I said, then, don't imagine Mahaprabhuji here in Ajna Chakra, because you give too much tension here. Go in the heart and have him in the heart. Okay. What Guruji said? Okay. Next day when I came, Guruji said, Mahesh, you confused everything. I said, what? I transport the Mahaprabhuji from Ajna Chakra to Anaha Chakra. Now, this settlement from transport from Jordan to Khatu is not so easy, you know. You have to make many things. So today, I was nearly confused. I mean, Ajna Chakra or Anaha Chakra or Ajna Chakras? So, but I asked him, have you the headache? He said, no headache, but confusion. Better I should have a headache than such a feelings. So, but after some time, Guruji said to some people, Mahesh have transferred the Mahaprabhuji from Ajna Chakra to Anahad, from Ajna Loka to Anahad Loka. But he said he have still his sabi. Then what he said, he held the lotus feet of Mahaprabhuji in the heart and his divine light in his Ajna Chakra. Very different seva, different things. Then Guruji said when he was doing the Mansik Puja, how from the beginning, early morning when Mahaprabhuji got up and all sevas what Guruji did, he was doing exactly the whole seva, 1 hour. Well, meditation. We need to purify our panchkosha. And this is a anamaya kosha, only what I am telling you. Jaisa khayega ann, vaisa rahega man. Agar koi papi ka ek bhi dana a gaya, to tumhari buddhi brisht ho jayegi. Isiliye kaha ki bhojan karne se pehle Bhagwan ko bhog diya jata hai. Mera to kuch hai nahi, jo kuch hai tera. Tera tujhko arpan karte kya lagta hai mera. He Prabhu, hame mahaprasadi hi dijiye, brahma arpanam. Hum arpan karte hai, tyag karte hai, Bhagwan ka diya hua, Bhagwan ko chadate hai, phir baad mein jo hota hai, hum lete hai. Usme kya hota hai ki, agar koi aisi vrittiyan ya aisi koi aise pran uske andar ho, us anaj ke andar, to wo nirmal ho jata hai, shuddh ho jata hai. Ek baar Guruji ne kaha ki Mahesh, mere sir dard ho jata, abhi pata nahi dhyan karta to. 3-4 baar Guruji furmaye bola, to maine kaha kaise karte aap dhyan? To Guruji ne kaha ki yahan Bab Mahaprabhu ji ki sabhi viraj rahe hain aur main mere Mahaprabhu ji ke dahine pair ke anguthe ke andar jo prakash amrit nikalta hai uska paan karta hu aur usi ke aadhar par maine bhajan bhi likha. Mahaprabhu ji ne kaha, Guru ji ne kaha ki wo itna aanand hai ki uska koi paar hi nahi hai, to wo kab purn hoga, wo kab bharega. तो बाप जी ने वो भजन लिखा कि प्रेम का प्याला हरि कब मेरा भर से, ये मेरा प्रेम रूपी प्याला जो है प्रभु कब पूर्ण हो जाएगा, कब भर जाएगा. तो मैंने कहा मां प्रभु जी को यहां से अब हृदय चक्र में ध्यान कराओ आप. दूसरे दिन आया तो बाप जी कहते मेरे तो है गड़बड़ कर दी. मैं क्यों? कि मां प्रभु जी का ट्रांसफर कर दिया अनाहद से, आज्ञा से अनाहद,
और सब मेरी वृत्तियों का ध्यान का वो, मैंने कहा हो तो वापस वैसे ही करें आप। बोला नहीं नहीं अब ट्राई करूंगा इधर भी। तो ध्यान की विधि होती है, महापुरुषों को यह अनुभव होता है, गुरुजी को होता था, और हम लोग जो ध्यान करने को बैठते तो क्या होता है, चलो लोग कहते हैं भगवान की पूजा करनी चाहिए, मंत्र बोलते, काम पे तो जाना है ही है, वो इतना आदमी इतना बेकार है, वो पैसा ले गए वापस देने का सोच नहीं रहा है। खैर बच्चों की शादी भी करनी चाहिए, अब ध्यान कर रहे हो कि ये वृत्ति विचार कर रहे हो। इसलिए कहा है कि हमारे महर्षि पतंजलि ने कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोधः, योग के द्वारा हमारी चेतना के अंदर, चित्त के अंदर जो वृत्तियां विचार चल रहे हैं इनको निरोग नहीं करेंगे, निरोध नहीं करेंगे, इनको रोकेंगे नहीं जब तक हम हमारे अगले गंतव्य या अगली सीढ़ी पर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन वृत्ति का निरोध करने के लिए अतः योगानुशासनम अनुशासन जीवन जीना पड़ेगा, अनुशासन ही सफलता की सीढ़ी है, अनुशासन ही परिवार को मजबूत, समाज को मजबूत, और अनुशासन ही देश को महान बना सकता है। जहां अनुशासन नहीं रहा वहां सब मामला बिगड़ जाएगा। इसीलिए पूज्य श्री गुरुदेव का ये भजन जब मैं गाता हूं तो बाप जी की वो मनोहर सभी सामने आती है, मुस्कान आती है और कहते हैं कि तुमने महाप्रभु जी का ट्रांसपोर्ट कर दिया। मैंने कहा बाप जी ट्रांसपोर्ट नहीं किया। तो डॉक्टर शांति विल सिंग नाउ दिस भजन, प्रेम का प्याला हरि कब मेरा भरसी। दीप नारायण भगवान की। तो टुडे आई स्पोक अबाउट अन्नमया कोशा, टुमारो लेट्स कम टू द प्राणमय कोशा। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पांच, दिस आर द फाइव डिफरेंट चैम्बर्स, विदिन दिस फाइव इज दैट जीवात्मा एंड आत्मा दैट हैज टू बी प्यूरिफाइड, देन दिस रेडियंस द रेजोनेंस, व्हेन दिस इज प्यूरिफाइड then you are beyond this all material vibrations, from you is only divine radiance is coming, and anyone who comes closer, sits around you, go around the temple, you are in this abhamandal inside. Deep Narayan Bhagwan ki, Deveshwar Mahadev ki, माधव कृष्ण भगवान की, सनातन धर्म की, अलग

हरि ओम। नाउ स्लोली लाइक दिस फ्रॉम अबव 10 सेंटीमीटर अबव द कैंडल यू ब्लो ऑफ द फ्लेम लाइक दिस। वेरी गुड, थैंक यू। सो टुडे प्रैक्टिस इज फिनिश्ड and wish you all the best. Remain there where you are, don't move your candles, let them become

देवादिदेव देवेश्वर महादेव अलकपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान दीप नारायण भगवान सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति।

ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यं ओम शांति शांति शांति। श्री दीप नारायण भगवान की, श्री श्री देवेश्वर महादेव की, हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, द ब्लेसिंग ऑफ भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी, देवपुरी जी एंड होली गुरु जी, our dear spiritual seekers around the world, blessing of the divine for you too. Subject: heart and the brain, the emotion and intellect. It's perfect, beautiful. These two things makes the human. Often we call this person doesn't have a human heart. Or we say this person doesn't have the viveka, intelligence. Now, the intellect and emotion, both should be in balance. Without emotion, we cannot live. And without intellect, we cannot live.

जहाँ श्रद्धा है, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। श्रद्धा मीन्स एडोरेशन, श्रद्धा मीन्स डेडिकेशन। इफ यू डोंट हैव फेथ नथिंग विल हैपन। फेथ इज रिक्वायर्ड। इफ यू फेथ देन आवर मंत्रा, आवर अनुष्ठान एंड आवर विशेस विल बी फुलफिल। सो दैट्स ऑल। आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू वी आवर लाइफ इज जर्नी समवेयर टूडे। सो वी विल सेंड वन ओम फॉर विश्व गुरुजी गुड हेल्थ प्रेयर बाय थ्रू द ओम टू विश्व गुरुजी एंड वेल बींग टू ऑल द क्रिएचर्स एंड प्रॉस्पिरिटी फॉर एवरी वन। सो प्लीज इनहेल।

0: वाहे
1: जय।
0: देवादी देव देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
0: दीप नारायण भगवान की अलखपुरी जी महादेव
1: की जय।
0: सत्य सनातन धर्म
1: की जय।
0: सत्संग, सत मीन्स द ट्रूथ and sung with the bhaktas. Those who come for satsang, it means who is the truth person, who is searching for the personality of the truth. And that's why only they can come who is the bhaktas. Sat sangha means living together, sitting together like brothers, sisters, friends, bhakta, yogis, etc. We can read

हिंदुराम समृत सतगुरु स्वामी माधवरंजी भगवान की जय विश्वगुरु महामदलेश्वर स्वामी महेश्वरनांची योगी राज की जय सत्य सनातन धर्म की जय

0: महादेव
1: की जय।
0: सतगुरु स्वामी माधवानंद
1: जी भगवान की जय।
0: अलखपुरी जी महादेव
1: की जय।
0: सत्य सनातन
1: धर्म की जय।
0: ओम
2: विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव
1: की जय।

ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलचलम सर्वदिशाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुतम नमाम्यम ओम शांति शांति शांति। दीप नारायण भगवान की जय। देवेश्वर महादेव की जय। माधव कृष्ण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस, सैल्यूटेशन टू द कॉस्मिक लाइट, एडोरेशन टू द डिवाइन मास्टर्स and welcome all of you. Nice to be again in the Vancouver, and I enjoy to go to the Stanley Park to take the lot of oxygen. Vancouver as well as

की जय। बुरिये शंकर भोलेनाथ की जय। मलयवतार आत्मा पुरुष लकपुरी जी सितपीत परंपरा की जय। देवति देव देवेश्वर स्वयंभुदेव पुरुष महादेव की जय। आराधि देव बुढ़िये श्री दीपनर भगवान महाप्रभु जी की जय। श्री श्री हिंदू धर्म सम्राट परमं श्री स्वामी माधवानंद पूज्य भगवान की जय। श्री श्री सर्वभूमिश्व गुरु मां मंडलेश्वर परमं श्री स्वामी महेश्वरानंद पूज्य भगवान की जय हो।

इति श्री महागणेश पंचरत्न स्तोत्रम् समाप्तम्। ओम रिरि सिरिदाता गौरीपुत्र महागणपतिदेव की जय। ओम बुढ़िये शंकर भोलेनाथ की जय। विश्व

देवदिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्री दीप नारायण भगवान की जय। होली गुरु जी भगवान की जय। स्वामी महेश्वरानंद जी सर्वभूम जगत गुरु योगी राज की जय। साब ऋषि मुनि महात्माओं की जय।